अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत गड़बड़ हत्या कमाए अशांत पापी पाप अशांत कूड़े आर करे फिराए अशांत मलेर मार पाए अशांत निंदक करे पा नानक नीच कहे मिटा मारे न जा माके जो तो पावे सही

सोहन पंच प्रवान नदरी कर्म सोवे कच्छ पाई उत्थे पाए नानक गया कर्म खंड का एहो

निर्भौ निर्वैर अकाल मूर्ति अजूनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक उस

सब सुरती मेल सुरत कमाई सब कीमत मेलो कीमत पाई ज्ञानी त्यानी गुर गुरहाई कहण न जाई तेरी तिल वडयाई आई।

दुख सो क्यों विसर मेरी माए साचा साहेब साच नाए रहाओ साचे नाम की तिल वडे आई आख थके कीमत नहीं पाई।

राग गुजरी महला चौथा हर के जान सतगुर सत पुरखा बिनो करो गुर पास हम की रे करम सत

रहाओ। जनन पिता लोक सुत बनता, कोए न किस की तरिया। सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर, काहे मन भाओ करिया। ऊडे ऊड आवै सै कोसा, तिस पाछै बचरे शरिया। तिन कवण खलावै कवण चुगावै, मन मैं सिमरन करिया। सब निदान दस अष्ट सिधान, ठाकुर

पढ़ है बहु सिमरत शाश्वत जी, कर किरिया खट कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता। तू आदि पुरख अपरंपर करता जी, तुद जेवड अवर ना कोई, तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू निह चल करता सोई, तुद आपे भावै सोई वरतै जी, तू आपे करहै सो होई, तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सब सह का जानोई। आशा महला चौथा, तू करता सचियार मेंढा साई, जो तौ भावै सोई थीसी, जो तू दे सोई हों पाई, रहाओ सब तेरी तू सबनी त्या।

तुद बिन दूजा अवर ना कोए, तू कर कर वेखै जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला, तित सर वरड़ै

चतुर्दशकंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कार विषण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा।

सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो देव दायत जक्षण उपजायो। आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सेव गुण सुख दियो सत्रन को पालमो बाद कियो। घट घट के अंतर ही

चीटी ते कुंचर अस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पशाना, घट घट की पट पट की जाना। जब उदकर्ख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। जब अकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तारै, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही तेरे।

अहंकार का चीन तनह पेवो। आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत पिन पिन तो है तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, किह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कही भूपा। अंडज जेरज से तज कीनी, उत्पूज खान बहुर राच दीनी। कहूं फूल राजा हवय बैठा, कहूं सिमट पयो संक्र इकैठा। सगरी सृष्ट दिखाए अचंपव,

असिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण खाता जे अस तुज तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुखित हवा मरे पुरख जवन पग परे ते हारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते आय है ताकि काल निकट नह आय है रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला।

नित्य सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह श्वाय सकै ना कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास ते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा।

पौड़ी। तिथै तू समर्थ जिथै कोए नाहे, उथै तेरी राख अग्नि उदर माहे। सुन कै जम के दूत नाए तेरा छड जाहे। पौ जल बिखम अस गाहो, गुर शब्दी पार पाहे। जिन

दरगह पाई ठाओ। कहो नानक कृपा करे जिसनु ए वथ दे, जग मह उत्तम काढ़ी है विरले के महला पंजवा।

ऐसी प्रीत करो मन मेरे, आठ पहर प्रवचनों ने सच कहूं सुन ले हो सब है, जिन प्रेम की तिन ही प्रभ पायो, नामे प्रीत नारायण लागी, सहज सुपाई पयो बैरागी, साची प्रीत ना तुटी प्यारी, जुग जुग रही समाई, हे पाही जिसने मान प्रभु दे नाल संसार नो त्याग के आप त्याग प्रिय नित सरणी गुरते पाई है एहो निधान, ओ फिर सदा लई संसार दे विच एह लोक परलोक दे विच सदा लई अमर हो गए ने, क्यों साची प्रीत ना तुटे प्यारी, जुग जुग रही समाए, ओ भगत जन सदा लई अमर हो गए ने, जिन्हां ने संसार नो त्याग के केवल ते केवल उस माल प्रभु दे नाल प्यार पाया, सो इनिक सेवा प्रवानकनी हुई भुला चुका दिखीमा। आओ अगले प्रोग्राम कथा दे सरण करिए, सिख पंथ दे विद्वान सत्कार योग ज्ञानी लखविंदर सिंह जी खालसा जी, उन्हां पासों चल रही धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की गुरबाणी की लड़ीवार विचार सरण करिए। दास रूपति प्रवान करो जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

हे गुरु साहिब जी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद आद अद्वैख अपीख महाप्रभ सत स्वरूप सो ज्योत प्रकाशी पूर रहो सब ही घट के पट तत् समाद स्वभाव परनासी आद जुगाद जुगाद तुही प्रभ फैल रहो सब अंतरवासी दीन दयाल कृपाल कृपा कर आद अजून अजय अबनासी हर की वड्याई हौ आख ना सक हौ मूर्ख मुगदनी जान जन नानक को हार बख्श लै मेरे स्वामी

अंतर्गत तीर्थ मल नहाओ, सब गुण तेरे मैं नहीं कोए, विण गुण कीते भगत ना होए, स्वस्थ आत बाणी बरमाओ, सत सुहान सदा मन चाओ, कवन सुवेला

जय कर कीर्ति आखिया करते का हो विचारो चितकर गावो सोहिला सिवरे सिरजनहारो तुम गावो मेरे निर्भव का सोहिला हाँ वारी जित सोहिला सदा सुख हो रहाओ नित नित जियड़े संभाली अन देखेगा देवनहार तेरे दाने कीमत ना पवै तिस दाते कवन सुमार संभसाह लिखिया मिल कृपाव तेल देहो सजनिया सीसड़िया ज्यों होवै साहिब स्यों मेल कर करे हु पहुचा सदड़े नित पवन

रमैया के गुण चेत पुराणी कवन मूल ते कवन दृष्टानी जिन तू सासवार सिंगारिया गर्भगन में जिने उबारिया बार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध पर जुबन पूजन सुख सूद बिरद पया उपर साक्षैन मुख पयाओ बैठ को दैन निव निर्गुण गुण कछु न बुझै बख्श ले हो तो नानक सीजै जे प्रसाद हर उपर सुख बसै सुत प्रात मीत बनता संग हसै जे प्रसाद पीवै शीतल जला सुखदाई पवन पावक मुल्ला जे प्रसाद भोगै सब रसा सगल समग्री संग साथ बसा दीने हस्त भाव करने तरसना तिसे त्यागवर संरचना ऐसे दुख मूडंद व्यापे नान काट ले प्रव्यापे आद अंत जो राखन हार तिस्यों प्रीत न करे गवार जाकी सेवा नम निध पावे तस्य मूड़ा मन हिलावे जो ठाकुर सर सदा हजूरे ताको अंधा जान तजूरे जाकी टहल पावे दरगह मान तिसे विसारे मुग्ध जान सदा सदै भूलन हार नानक राखन हार अपार रतन त्या कौडी संग रचै सा छोड़ झूठ संग बचै जो चटना स्वस्त्र करमान जो होवन सो दूर परान छोड़ जाए तिसका श्रम करे संग सहाय तिस पर हरे चंदन लेप उतारे तो हे गर्द प्रीत प्रसन्न संग होए अंधकु मैं पत विकराल नानक काढ़ लेहु प्रभ दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात बार भेगंतर मल माया छप सुनाय कछ करे छिपाया बार ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापै लोभ सुहान अंतर अगन बार तन स्वाहा गल पात्र कैसी तरह था जाके अंतर बसै प्रव्याप नानक दे जन सह समात सुने अंधा कैसे मार्ग पावै कर गहले हो ओढ़ निभावै कहा बुझारत बुझै डूरा निष्कही है तू समझै पूरा कहा विष्ण पद गावै गुंग जतन करै तौ पी सुर भंग कै पिंगुल पर्वत पर पवन नहीं हो तू हां उस गवन करतार करुणा मैं दीन बेनती करे नानक तुमरी कृपा तरे संग सहाय सुवावै न चीत जो बहराई ता सुप्रीत बलुआ के गृह पीतर बसै आनंद केल माया रंग रसै दृढ़ करमानै मने प्रतीत काल न आवै मूढ़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महा लोभ द्रोह याहू जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लेहो अपन कर कर्म तू ठाकुर तुम पै अरदास जीव पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा मैं सुख कनेरे कोई न जाने तुमरा अंत उच्चे ते उच्चा भगवंत सगल समग्री तुमरै

नानक कहू न सीजई बिन नावै पत जाय अष्टपति। दस वस्तूले पाचे पावे एक वस्तु कारण विकूट गवावे। एक भी न दे दस पीर ले तो मूड़ा कहु कहा करे। जिस ठाकुर से ना ही चारा दा को की जय सदन सुधारा। जा कह मन लागा परमीठा सर्व सूखता हूँ मन बूटा। जिस जने अपना हुक्म नाया सर्व तोग नानक तिन पाया। गंत सुहाओ अपनी देरास खास बीत बरतैन दुलास। अपनी मान कछ बहुर साहुले अज्ञानी मन रोस करे। अपनी बरती ताप ही खोवे बहुर उसका विश्वास न हुए। जिसकी बस तिसे आज्ञा रखे प्रभु की आज्ञा मन न मत है। उसते चौगुन करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल। उनकी भांत माया के हित सर पर होवत ज्ञान अनेत। बिर की छाया स्यो रंग लावे ओ बिन से मन पछतावे। जो दिसे सो चलन हार लपट रहे उते अंध अंधहार। बटाऊ स्यो जो लावे नेहि ताकू हाथ न आवे। केहि मन हर के नाम की बिरी सुखदाई कर कृपा। नानक आपले लाई मिथिया तान तन कुटम सुबाया। मिथिया हो मैं ममता माया मिथिया राजो मन तन माल। मिथिया काम कूद विकराल मिथिया रत हस्ती सुबस्त्रा। मिथिया रंग संग माया पेकस्ता मिथिया तो रोहो मोह विमानो। मिथिया पशु पर कर्त गमानो अस्त्र पग साध की शरण। नानक जप जप जीवे हर के चरण। मिथिया श्रवण पर निंदा सुने मिथिया हस्त पर दर्भ को हिरह। मिथिया नेत्र बेकत पर त्रै रूपाद। मिथिया रसना भोजन अनुस्वाद। मिथिया चरण पर विकार को तावह। मिथिया मन पर लोभ लुभाव है। मिथिया तन पर उपकारा मिथिया बास लित विकारा। बिन बूझे मिथिया सब पै सफल दे नानक हर हर नाम लय। वृति सागत की आर जा साच बिना कहूत सूचा। बिरथा नाम बिना तन अंध मुखावक्त ताक दुर्गंध। बिन सिमरण दिन रैन बिरथा बिहाए मेघ बिना ज्यो खेती जाए। गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम ज्यो कृपण के निरार्थ दाम। धन धन ते जन जी घट बस्यो हर नाओ। नानक ताकै बल बल जाओ रह तवर कछवर कमावत। मनी प्रीत मुखो गंड लावत जन नहार प्रभु परबीन। बाहर भेख न काहू पीन अवर उपदेश आप न करे। आवत जावत जन मै मरे जिसके अंतर बसे निरंकार। तिसके सीख तरह संसार जो तुम पानी तिन प्रभ जाता। नान कुंजन चरण पराता करूं बेनती पार ब्रह्म सब जाने। अपना किया आप मन आप पाप करत नबेरा। किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा। पाप सियान सगल ते रहत सबका जाने आत्म की रहत। जिस पावे तिसले लड़ लाए थान तनंतर रहा समाए। सो सेवक जिस कृपा करी निमक निमक जप नानक हरी। श्लोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिन सजाए अंग मेव। नानक प्रभु शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी। जेह प्रसाद छति अमृत खाहे तिस ठाकुर को रख मन माहे। जेह प्रसाद सुगंध तन लावै तिसको सिमृत परम गत पावै। जे प्रसाद बसै सुख मंदर तिसै त्याय सदा मन अंदर। जे प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पहर सिमरो तिस रसना। जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याय त्यावन जोग। जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै तिसै त्याग कतवर लुभावै। जे प्रसाद सुख से सुविजै मन आठ पैरता का जस गावी जय। जे प्रसाद तू सब को मान मुक्ता को जस रसन बखाने। जे प्रसाद तुरु रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म। प्रभ जी जप दुर्गै मान पाव है नानक पद सिद्धि कर जाव है। जे प्रसाद अरु कंचन देही लिवलाओ तिस राम सुनेही। जे प्रसाद तेरा उल्ला रहत मन सुख पाव है हर हर जस कहत। जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके मन सरनी पर ठाकुर प्रभु ताके। जे प्रसाद तुझको न पहुँचे मन साथ साथ सिमरो प्रभु उच्चे। जे प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानक ताकी भगत करे। जे प्रसाद भूखन पहरी जय मन ते सिमरत क्यों आलस की जय। जे प्रसाद असु हस्त सुवारी मन तिस प्रभु को कबू न बिसारी। जे प्रसाद बाग मिलक तनारा प्रभु अपने मना। जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठ सत्य सहत्याई तिसह त्याय जो एक लख हूँ। नानक तेरी रखै
जी प्रसाद करे पुन बोधान मन आठ पैर कर तिसका ध्यान जी प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभु को साथ साथ चितारी जे प्रसाद तेरे सुंदर रूप सो प्रभु सिमर सदा अनूप जे प्रसाद तेरे निकी जात सो प्रभु सिमर सदा दिन रात जे प्रसाद तेरी पत्र है गुरु प्रसाद नानक जस कह जे प्रसाद सुने करना जे प्रसाद बिखे बिस्मात जे प्रसाद बोले अमृत रसना जे प्रसाद सुख सह जे बसना जे प्रसाद हस्त कर चले जे प्रसाद संपूर्ण फले जे प्रसाद परमगत पावे जे प्रसाद सुख सह समावे सब प्रभु त्याग बरकत लागो गुरु प्रसाद नानक मन जागो जे प्रसाद तुम प्रकट संसार तिस प्रभु को मूल न मनो विसार जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तूता को जाप जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे जे प्रसाद तू पावे सास रे मन मेरे तू ता सिवरा जे प्रसाद सब की गत हुए नानक जाप जपै जप सोए आप जपाए जपै सो ना आप गावे सो हर गुण गाओ प्रभु कृपा दे हुए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास प्रभु सो प्रसन्न बसे मन सोए प्रभु दया ते मातु होए प्रभु दया ते मातु तम होए सर्व निदान प्रभु तेरी माया भू कछु न किन्हु लया चित्त

कथा हुए सुन मीता नानक बिनवंता साधना किए चर्च कथा अष्टपदी साधक संग को जल होत सासंग मल सगली कोत साधक संग मिटया विमान साधक संग प्रगट सुज्ञान साधक संग जय प्रभनेरा सासंग सबहूत नबेरा साधक संग पाए नाम रतन साधक संग एक प्रजतन साध की महिमा वर्णे कौन पुरानी नानक साध की शोभा ब्रह्मा समानी साध की साध के संग गोचर मिले साध के संग सदा प्रफुल्ल साध के संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग हुई सब की रेन साध के संग मनोहर बैन साध के संग नकत हुंता वै साध संग स्थित मन पावे साध के संग माया ते पिन साध संग नानक प्रभु सुप्रसन्न साध संग दुश्मन समीत साधु का संग महापुनीत साधसंग किस्यों ने बैर साधक संग न भीगा पैर साधक संग ना ही कुमंदा साधसंग जाने परमानंदा साधक संग ना ही होताप साधक संग तजय सब आप अपे जान साध बढ़ाई नान साध प्रभु बने आई साधक संग न कब हुता वै साधक संग सदा सुख पावै साधसंग बस्ता गोचर लै साधु कै संग हजार सह साध के संग बस थान उच्चै साधु कै संग मैल पहुंचे साध के संग जड़ सब धरू साध के संग केवल पार ब्रह्म साध के संग पाए नाम निदान नानक साधु कै कुर्बान साध के संग सब कुल उतार है साध संग साजन मीत कुटावन निस्तार है साधु कै संग सो तन पावे जिस तन ते सब को बरसावे साध संग धर्म राय करे सेवा साध के संग शोभा सुर देवा साधु कै संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गाय साध के संग सर्व तान गम नानक साध के संग सफल जनम साध के संग नहीं किच का हाल दर्शन भेट तो होत निहाल साध के संग कलुकत हरे साध के संग नरक पर हरे साध के संग इहां उहां सुहेला साध संग बिछरत हर मिला जो इच्छा सोई फल पावे साध के संग न बिरथा जावे पार ब्रह्म साध हृदय बसै नानक उदरै साध सुन रसै साध के संग सुनो हर नाउ साध संग हर के गुण गाउ साध के संग न मन ते बिसरै साध संग सर पर निस्तरै साध के संग लग्या प्रमीठा साधु कै संग घट घट डीठा साध संग भय आज्ञाकारी साध संगत भई हमारी साध के संग मिटे सब रोग नानक साध बेटे संजोग साध की महिमा वेद न जानै जिता सुनै ते तब के आनै साध उपमा ते गुण ते दूर साध उपमा रही भरपूर साध की शोभा का ना ही अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा उच्चते उच्ची साध की शोभा मूच

अवरण अपेक्षा कुछ बिन कोई, नानक लक्षण ब्रह्म ज्ञानी हो अष्टपदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्व को सुख, ब्रह्म ज्ञानी के दृढ़ समान जैसे राज रंको लागे तुल्पवान, ब्रह्म ज्ञानी के तीरजेक ज्यो वसुदा कुदय को चंदन लेप, ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाव नानक ज्यो पाव का सह सुभाव, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैं न लागे जला, ब्रह्म ज्ञानी के मन हुए प्रगास जैसे तारु पर आकाश, ब्रह्म ज्ञानी के मित्र शत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान, ब्रह्म ज्ञानी उचते उच्चा मन अपना है सब ते नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जन पे नानक जिन पर पाप करे, ब्रह्म ज्ञानी सगल कीरीना तुम रस ब्रह्म ज्ञानी चीना, ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पाया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी एक प्रयास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी कह गरीबी समाह ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार माह, ब्रह्म ज्ञानी कह नाही तंदा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा, ब्रह्म ज्ञानी कह हुए सुफला ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी कह कह रंग ब्रह्म ज्ञानी कह बसै प्रभसंग, ब्रह्म ज्ञानी कह नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी कह नाम परवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी के घर सदानंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का वित्ता ब्रह्म ज्ञानी एक संगहिता, ब्रह्म ज्ञानी कह हुए अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी करै प्रव्या ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए ब्रह्म ज्ञानी को खोजै महेश्वर नानक, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही, ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जायद आखिर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ का कर्ता ब्रह्म ज्ञानी साध जीव नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विदाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल कार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी। श्लोक उर धारै जो अंतर नाम सर्व में पिख है भगवान, निमक निमक ठाकुर नमस्कार नानक अपर सगल निस्तार है। अष्टपदी मिथ्या ना ही रसना परस मन में प्रीत निरंजन दर्श, पर त्रै रूप न पिख है नेत्र साध की टैल संसंग हेत, करण न सुने काहू की निंदा सब ते जाने आपस को मंदा, गुर प्रसाद बिखिया पर हरे मन की वासना मन ते टरे, इंद्री जित पंच दोख ते रहत नानकोट मध्य को ऐसा परस, वैसन सो जी सुपर सुप्रसन्न विष्ण की माया ते हुए भिन्न, कर्म करत हो वै नि कर्म तिस वैष्णु का निर्मल धर्म, काहू फल की इच्छा नहीं बाछै केवल भगत कीर्तन संग्राचै, मंथन अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल, आप जड़ै वह नाम जपावै नानको वैष्णु परम गत पावै, भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्याग दुष्ट का संग, मंत्र बिन सह सगला परम कर पूजय सगल पार ब्रह्म,
सासन पापा मल खूब है, तिस भगवती की मत उत्तम हुए, भगवंत की टहल करे नितनीत, मंतनेर पे विष्णु परीच, हर के चरण हृदय बसावे, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे। सो पंडित जो मन पर बुद्ध है, राम नाम तुम शुद्ध है, राम नाम सारस पीवे, उस पंडित के बुद्धि जग जीवे, हर की कथा हृदय बसावे। सो पंडित फिर जो न आवे, वेद प्राण सिमृत बुझे मूल, सुख में जाने अस्थूल, चौवर्ण को देव देश, नानक उस पंडित को सदा अदेश।

आवे जिन कोई कर कृपा अंतरुर तारे पस प्रीत मुग्ध पात्र को तारे सर्व रूप का उखद नाम कल्याण रू मंगल गुण गाम काहू जुगत किते न पाइये धर्म नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म जिसके मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सतराम दास आत्म राम तिसन दरी आया दास दसंतन पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास तरगह परवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास

जीवन मुक्त सो कहावै तैसा हरख तैसा उसोग सदानंद तै नहीं वियोग तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी बिखाटी।

कहिए जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगरे ठाऊ जित जित कर रख है तैसा तिन्नाऊ आपे करण करावन जोग प्रभावै सोई फुन होग पसरे आप अंत तरंग लखे न जाहि पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दे तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता अविनाश सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक भय निहाल। श्लोक उस्तद करे अनेक जन अंत न पारावार नानक रचना प्रभ रची बहुविद अनेक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट भय तीर्थवासी कई कोट बन प्रमय उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीश्वर होते कई कोट आत्म ध्यान तार है कई कोट कब का विचार है कई कोट नवतन नाम त्याव है नानक करते कंत न पाव है कई कोट भय अभिमानी कई कोट अंध ज्ञानी कई कोट कृपण कठोर कई कोट अपिग आत्म निकोर कई कोट पर दर्भ को हिर है कई कोट पर दुख न कर है कई कोट माया श्रमाहे कई कोट परदेश परमाहे जित जित लावो तित तित लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर्प पाए कई कोट पात्र बिरख निप जाए कई कोट पवन पानी बैसंतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट सस्यर सूर नखियतर कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र सगल समग्री अपने सूत तारै नानक जिस जिस भावै तिस तिस निस्तारै कई कोट राजस्थान सातक कई कोट वेद प्राण सिमृत शास्त्र कई कोट की रतन समुंद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट की चिर जीवे कई कोट गिरिमेर स्वर्ण थीवे कई कोट जग किन्नर पिशाच कई कोट भूत प्रे सुकर मृगाच सब ते नेरे सबूते दूर नानक आप लिप्त रहा भरपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक सुर्ग निवासी कई कोट जन्म जीव मर है कई कोट बोजोनी फिर है कई कोट बैठत ही खाहे कई कोट काले थक पाहे कई कोट किए तनवंत कई कोट माया मैं चिंत जय जय पाणा तह तह राखे नानक सब किछ प्रभ कै हाथे कई कोट भय बैरागी राम नाम संगतिन लिवलागी कई कोट प्रभ को खोजंते आत्म मह पार ब्रह्म लहंते कई कोट दर्शन प्रप्यास तिनको मिल्यो प्रभ विनाश कई कोट मांगे सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिनको होया सुप्रसन्न नानक त्रिजन सदा धन धन कई कोट काणी अर खंड कई कोट आकाश ब्रह्मांड कई कोट हुए अवतार कई जूत किन्नो विस्तार कई बार पसरे उपासार सदा सदै के कंकार कई कोट किन्ने भोपात प्रभते हुए प्रमाय समात ताकांत न जाने कोई आपे आप नानक प्रभ सोए कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होवत आत्म प्रगास कई कोट तत् के बेते सदा निहारे को नित्रे कई कोट नाम रस पीवे अमर भय सद ही जीवे कई कोट नाम गुण गावे आत्म रस सुख सह समावे अपने जन को साथ साथ सुमारे नानकोए परमेश्वर के प्यारे। श्लोक करण कारण प्रवेक है दूसर नाही कोए नानक तिस बलिहार ने जल तल महील सोए अष्टपदी करण करावन करने जो

हुक्मे उपजय हुक्म समावै, हुक्मे ऊच नीच व्यवहार, हुक्मे अनेक रंग प्रकार, कर कर देखे अपनी वडियाई, नानक समय रहा समाई। प्रपावै मानुख गत पावै, प्रपावै तां पात्र तरावै, प्रपावै बिन शास्त्री राखै, प्रपावै तां हर गुण पाखै, प्रपावै तां पत तुधारै, आप करै अपन विचारै, दुहां सिरियां काप स्वामी, खिलै बिकसै अंतर जामी, जो पावै सो कार करावै, नानक दृष्टि अवर न आवै, थौ मानुख ते क्या होय आवै, जो तिस पावै सोई करावै, इसके हाथ होए तां सब किछ ले, जो तिस पावै सोई करे, अन जानत विख्या मै रचै, जे जानत आपण आप बचै, भरमे भूला दै दिसतावै, निमक माई चार कुंट फिर आवै, कर कृपा जिस अपनी भगत दे, नानक ते जन्ना मिले, किन मै नीच कीट को राज, पार ब्रह्म गरीब नवाज, जाका दृष्ट कछु न आवै, तिस तत्काल दा दिस प्रगटावै, जाको अपनी करै बख्शीश, ताका लिखा न गने जगदीश, जीव पिंड सब तिस की रास, कट कट पूर्ण ब्रह्म प्रगास, अपनी बनता बनाई, नानक जीवै देख वडाई, इसका बल ना ही साथ, करण करावन सर्व को नाथ, आज्ञाकारी बपुरा जियो, जो तिस पावै सोई पुनतियो, कबहू ऊंच नीच मह बसै, कबहू सोग हरख रंग हसै, कबहू निंद चिंद व्यवहार, कबहू बकास पयाल, कबहू बेता ब्रह्म विचार, नानका मिलावनहार, कबहू निर्त करै बहुपात, कबहू सोए रहै दिन रात, कबहू मां क्रोध विकराल, कबहू सर्व की होतरवाल, कबहू हुए वह बड़ राजा, कबहू भिखारी नीच का साजा, कबहू अपकीरत में आवै, कबहू भला भला कहावै, जो प्रवरा कहते वही रहै, गुर प्रसाद नानक सच कहै, कबहू होए पंडित करे बखियान, कबहू मोन धारी लावै ध्यान, कबहू तट तीर्थ स्नान, कबहू सिद्ध साधक मुख ज्ञान, कबहू कीट हस पतंग होए जी, यानिक जोन भरमै भरमिया, नाना रूप जो सुहागी दिखावै, जो प्रभावै तिवै नचावै, जो तिस पावै सोई होए, नानक दूजा वर न कोए, कबहू साध संगत त्यो पावै, उस स्थान ते बहुर न आवै, अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस

किन्ह बकियानी सच सच सच सब कीना कोट मदे किन्ह बिरलै चीना भला भला भला तेरा रूप असुंदर पार रूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी श्रवण बकियानी पवित्र पवित्र पवित्र पुनी।

अष्टपदी संत कह दुखन आर जा कटै, संत कह दुखन जमते नहीं छुट्टै, संत कह दुखन सुख सब जाए, संत कह दुखन नरक में पाए, संत कह दुखन मत होए मलीन, संत कह दुखन शोभा ते हीन, संत के हते को रखे न कोई, संत कह दुखन तान प्रस्त होए, संत कृपाल कृपा जे करै, नानक संसंग निंदक भी तरै, संत के दुखन ते मुख पवै, संतन कह दुखन काग जून लवाए, संतन कह दुखन सर्प जून पाए, संत कह दुखन तिग जून किरमाए, संतन कह दुखन तृष्णा में जलाए, संत कह दुखन सब कुछ लय, संत कह दुखन तेज सब जाए, संत कह दुखन नीच निचाए, संत दुखी का था गो नाहे, नानक संत पावे तावे भीगत पाए, संत कह निंदक महत ताई, संत का निंदक टिक न पाई, संत का निंदक महत आरा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राज ते हीन, संत का निंदक दुखी आर दीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा बिजोग, संत की निंदा दुख मैं दुख, नानक संत पावे तो उसका पी हुए मोख, संत का दुखी सदा पवित्र, संत का दुखी किसै का निमित, संत के दुखी को डान लाग गए, संत

दुखी कौ सब त्यागै। संत का दुखी महा अहंकारी, संत का दुखी सदा विकारी, संत का दुखी जन्म मरे, संत की दुख न सुख ते टरे, संत के दुखी को ना ही ठाऊ, नान संत पावे था ले मिलाए, संत का दुखी अद बीच ते टूटे, संत का दुखी किते काज न पहुँचे, संत के दुखी को ध्यान फरमाइए, संत का दुखी उजड़ पाइए, संत का दुखी अंतर ते थोथा, जो सास बिना मृतक की लोथा, संत के दुखी की जड़ किचनाए, अपन भी जापे ही खाए, संत के दुखी गवर न रखन हार, नानक संत पावे तां लै उबार, संत का दुखियों बिल लाए, ज्यों जल बिहुन मछली तड़फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजै, ज्यों पावक इंद्र नहीं त्रापै, संत का दुखी छुट्टिया केला, ज्यों बुआड़ तिलके तमाहे दुहेला, संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सदमिथिया कहत, कृत निंदका तुर ही पया, नानक जो तिस भावै सोई थया, संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दुखी को दरगह मिले सजाए, संत का दुखी सदा सहकाइय, संत का दुखी न मर न जीवाइय, संत के दुखी की पूजै न आसा, संत का दुखी उठ चले निराशा, संत का दुख न तृष्ट कोई, जैसा भाव है तैसा कोई हुए, पै कीर्तन मिट कोई, नानक जान सच्चा सोए, सब घट तिसके करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभु की स्तुत करो दिन रात, जत्याहु सास गिरास, सब कछ वरतै तिसका किया, जैसा करे तैसा कोथी, अपना किला करने हार, दूसर कौन कह विचार, जिसनु कृपा करे दे सब नाम दे बड़ भागी, नानक जन शेष लोक, तजो सियान सुरजन हो, सिमरो हर हर राय, एक आस हर मन रखो, नानक दुख परम पहु जाय, अष्टपदी मानु की टेक वृथि सब जान, देवन को एक भगवान, जिसके दिया रह गाय, बौन दुष्ण लग गया, मारे राखे को आप, मानु कह किसना ही हाथ, जिसका हुक्म सुखोए, जिसका नाम रखंठ परोए, सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बिघन न लागे कोई, उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसना मृत पियो, सदा सुहेला कर लह जियो, नैनो पेख ठाकुर का रंग, सासु बिन सह सत्संग, चरण चलो मार गोबिंद, मिटे पाप जपिए हर बिंद, कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दर्ग है नानक जल मथा, बड़भागी ते जन जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाहे, राम नाम जो करे विचार, चेतन वंत गनी संसार, मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी, एको एक एक पछाने, ए तुत की उसु जी जाने, नाम संग जिसका मन मानिया, नानक तिने निरंजन जानिया, गुरु प्रसाद अपना सुजै, तिसकी जानो तृष्णा बुझै, सा संग हर हर जस कहत, सर्व रोग त्यो हर जन रहत, अंदिन कीर्तन केवल बखियानु, गृहस्त में सोई निर्वाण, एक ऊपर जिस जन की आशा, तिसकी कटी है जम की पासा, पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक दिशन लागै दुख, जिसको हर ब्रह्मन चिते आवै, सो संत सुहेला नहीं डुलावै, जिस प्रभे अपना कृपा करै, सो सेवक को किसते डरै, जैसा सत ऐसा दृष्टाया, अपने कार्य में आप समाया, सो दत्त सो दत्त सो दत्त सीजिया, गुर प्रसाद तब सब उजिया, जब देखो तब सब किच मूल, नानक सो सुखम सोई असूल, न किस जन्म न किच मरे, अपन चलता पी करे, आवन जावन दृष्टन दृष्ट, आज्ञाकारी धारी सब सृष्ट, आपे आप सगुण मै आपन, कि जुग त्रिष्ठा पुथाप, अपना सीना ही किच खंड, धारन तारे हो ब्रह्मांड, अलख पे पुरख प्रताप, अब जपाए धन नानक जाप, जिन प्रभ जाता सो शोभावंत, सगल संसार उतरै तिन मंत, प्रभ के सेवक सगल उदाहरण, प्रभ के सेवक दुख विसारण, आपे में लय कृपाल, गुर का सब जपै निहाल, उनकी सेवा सोई लागै, जिसनु कृपा करै बिट भागै, नाम जपत पावै विश्राम,
नानक तिन पुर को उत्तम करमान। जो किछ करै सो प्रभु कै रंग, सदा सदा बसै हर संग। सह सुभाय हुवै सो होइ, करनै हार पछानै सोइ। प्रभु का किया जन मीठ लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना। दृष्टि उपजे जिस माय समायो, सुख निदान नु बने आए। आपस को आप दीनो मानो, नानक प्रभु जन को जान। श्लोक सर्व कला भरपूर, प्रभृता जननहार। जाके सिमरन उतरिय नानक तिस बलिहार। अष्टपदी टूटी गंड नहार, गोपाल सर्व जी आपे प्रतपाल। सगल की चिंता जिस मन मारे, तिस्ते विरता कोई ना हे। रे मन मेरे सदा हर जाप, अपना सी प्रभु आपे आप। अपन किया कछु ना होए, जिस सो प्राणी लोचे कोई। तिस बिना ही तेरे किछ काम, गत नानक जपे कर नाम। रूपवंत हुए नाही मोह है, प्रभु की जो सगल घट सो है। तनवंता हुए क्या को गर्भ है, जा सब किस तिस का दिया दर्भ है। अद सूरा जे को कहा वह, प्रभु की कला बिना कहता वह। जे को हुए वह दाता, किस देन हार जाने गावार। जिस गुर प्रसाद टूटे हो रोग, नानक सूजन सदा रोग। जो मंदिर को थामे थम्बन, त्यों गुर का शब्द मने स्तंभन। जो पाखा नाव चढ़त रह, प्राणी गुरु चरण लगत निष्ठा रह। जो अंधकार दीपक प्रगास, गुरदर्शन देख मन हुए बिगा। जो माव ध्यान में मार्ग पावे, त्यों साधु संग मिल ज्योत प्रगटावे। तिन संतन की बाँचो तूर, नानक की हर लोचा पूर। मन मूर काहे बिल लाइये, पुरख लिखे का लिखिया पाइये। दुख सुख प्रभु देवन हार, अवर त्याग तू तुसै चितार। जो कुछ करे सोई सुख मान, भूला काहे फिरै जान। कौन बसताई तेरे संग, लपट रे रस लोभ विपतंग। राम नाम जप हृदय माहि, नानक पद चिट्ठी कर जाहि। जिस वखर को लैन तू आया, राम नाम संतन कर पाया। तज मान लिहो मन मूल, राम नाम हृदय में तोल। लाद खेव संता संग चाल, वृत्या विख्या जंजाल। तन तन कह सब कोए, मुकुजल हर दर गै सोए। इहो व्यापार विरला व्यापार है, नानक ताके सुध बलिहार है। चरण साध के तो इत पियो, अर्प साधु को अपना जियो। साध की तूर करो स्नान, साधु पर जाइये कुर्बान। साध सेवा वडभागी पाई है, साध संग हर कीर्तन गाई है। अनेक विघन ते साधु राखे, हर गुण गाय अमृत रस चाखे। ओट गई संत दर आया, सर्व सुख नानक ते पाया। मृतक को जीवा लनहार, भूखे को देवत आधार। सर्व निदान जाकी दृष्टि माहे, पूर्व लिखे का लहना पाहे। सब किस तिसका उकरण है जोग, तिस बिन दूसर हुआ न होग। जप जानू सदा सदा दिन रहनी, सब ते ऊच निर्मले करनी। कर कृपा जिसको नाम दिया, नानक सूजन निर्मल थिया। जा कै मन गुर की प्रतीत, तिस जन आवै हर प्रभु चीत। भगत भगत सुनिए त्यो लोए, जा कै हृदय को हुए। सच करनी सचता की रहत, सच हृदय सतमुख कहत। साची दृढ़ सचा आकार, सच वर्तै सचा पासार। पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सो जन सच समाता। श्लोक रूप न रेख न रंग, के क्षेत्र गुण ते प्रभ भिन्न। तिसे बुझाए नानका, जिस हो वैसो प्रसन्न। अष्टपदी अपनासी ब्रह्मन मै राख, मानुक की तू प्रीति आग। इस्ते पर नाही किस कोए, सब निरंतर एको सोए। आपे बिना आपे दाना, गैर गंभीर गही सुजाना। पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद, कृपा निदान दयाल बख्शन। साथ तेरे की चरणी पाओ, नानक है मन हो अनराओ। मनसा पूर्ण सरना जोग, जो कर पाया सोई होग। हरन भरन जाका नेत्र को, तिसका मंत्र न जाने हो। रण ध्रु मंगल सजा कै, सर्व थोक सुनिए करता कै। राज में राजयोग में जोगी, तप में तपिश्वर गृष्ट में भोगी। त्याई त्याई भगत सुख पाया, नाम तिस पुर का किन्यंत न पाया। जाति लीला की मितनाही, सगल देव हारि अवगाहि। पिता का जन्म के जाने पूत, सगल पुरोही अपने सूत। समत ज्ञान ध्यान जिंदे, जन दास नाम त्या वैसे। त्यो गुण में जाको परमाहि, जन्म रह फिर आवै जायु। चनी तिसके स्थान, जैसा जना वै तैसा नानक जान। नाना रूप नाना जाके रंग, नाना भेक रह रंग। नाना बिद किनो विस्तार,
प्रभ बनासी एक कंकार नाना चलत करे किन माहे पूरे हो पूर्ण सब ठाए नाना बिरगर बंत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब गढ़ दिसके सब दिसके ठाओ जप जप जीवे नानक हर नाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे कांड ब्रह्मांड नाम के तारे सिमरत वेद पुराण नाम के तारे शून्य ज्ञान ध्यान नाम के तारे आकाश पाताल नाम के तारे सगलाकार नाम के तारे पुरिया सपवन नाम के संगुतरे सुन श्रवण कर कृपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सूजन गत पाए रूप सत जाका सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जा की बाणी सत पुरख समाहे समानी सत कर्म जा की रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सफली सत नाम प्रभु का सुखदाई विश्वास सत नान गुर ते पाई सत वचन साधु उपदेश सत ते जन जा कह हृदय प्रवेश सत निरत बुझे जे कोई नाम जपता की गत होए आप सत किया सब सत ते आपे जाने अपनी मित गत जिसकी सिर सु करने हार अवर न बूझ करत विचार करते की मित न जाने किया नानक जो दिस पावे सो वर्तिया बिस्मन बिस्म भय बिस्मार जिन बुझिया तिसाया स्वाद प्रभ कै रंग राजन रहे गुर कै वचन पदार्थ लहे वे दाते दुख कटनहार जा कै संग तरह संसार जन का सेवक सोवड भागी जन कै संग एक लिवलागी गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुर प्रसाद नानक फल पावे श्लोक आद सच जुगाद सच है पे सच नानक होसी पे सच अष्टपदी चरण सत सत प्रसनहार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखनहार नाम सत सत आवनहार आप सत सत सवतारी आपे गुण आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभक्ता सुरत सत सत जसुनता बुजनहार को सत सब हुए नानक सत सत प्रभ सोए सत स्वरूप हृदय जिन माने करण करावन तिन मूल पछाने जाके हृदय विश्वास प्रभे आया तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया पै ते निर्भउ हुए बसाना जिस ते बुझे तिस माय समाना बस्त माए ले बस्त गढ़ाई तको भिन्न कहना जाई बुझे बुजनहार बवेक नारायण मिले नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक है मन प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत ठाकुर को सेवक जान संग प्रभु का सेवक नाम कह रंग सेवक प्रपालन हारा सेवक की राख निरंकारा सो सेवक जिस तया प्रवतार है नानक सो सेवक साथ साथ सुमार है अपने जन का परदाटा कह अपने सेवक की सर पर रख अपने दास को दे बढ़ाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक किया पत रख ताकि गतमित कोय न लख प्रभु के सेवक को न पहुंचे प्रभु के सेवक ते उच्चे जो प्रभु अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दह जिस प्रगटाया निकी कीरी में कल रख पसम कर लश्कर कोट लख जिसका सास न काटते आप ताको रख देख रहात मानस जतन कर्तव पात किसके कर्तव बिरते जात मारण रख वरण कोई सर्व जिया का रख सोए काय सोच कर रे प्राणी जब नानक प्रबल कविडानी बार बार बार प्रभ जपिए पी अमृत मन तंत्र पिए नाम रचन जिन गुरमुख पाया तिस किछ अवर नाहीं दृष्टाया नाम धन नामो रूप रंग नामो सुखर नाम का संग नाम रस जो जंत्र बताने मंत्र नाम है नाम समाने उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक जन कै सदकाम भूलो जह जे बात न राउत प्रभ अपने जन की नींदात करे भगता तुम कह चाए प्रभ अपने सो रह समाए
जो हुआ हुवत सो जाने, प्रभु अपने का हुक्म पहचाने। तिसकी महिमा कौन बकानू, तिसका गुण कहे के न जानू। आठ पैर प्रभ से हजूरे, कहो नानक से जन पूरे। मन मेरे तिनकी ओट लेहे, मन तन अपना तिन जन देहे। जिन जने अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व थोक का दाता। तिसकी शरण सर्व सुख पावे, तिसके दर सब पाप मिटावे। अवर स्यानप सगली चाड़, तिस जन की तू सेवा लाग। आवन जान न होवी तेरा, नानक तिस जन के पूजो सत पैरा। सलोक सतपुरख जिन जानिया, सतगुर तिसका नाओ। तिसके संग सिख उतरे, नानक हर गुण गाओ अष्टपदी। सतगुर सिखी करै प्रतपाल, सेवक को गुर सदा दयाल। सिखी गुर दुरमत मल हिरै, गुर बचने हर नाम उचरै। सतगुर सिखे बंधन काटै, गुर का सिख विकार ते हटै। सतगुर सिखो नाम धन दे, गुर का सिख बड़ भागी हे। सतगुर सिखा हलत पलत सुखारै, नानक सतगुर सिख को जी नाल सुमारै। गुर कै ग्रह सेवक जो रहे, गुर की आज्ञा मन में सह। आपस को कर कछ न जनावै, हर हर नाम हृदय सत्यावै। मन बिचै सतगुर कै पास, ते सेवक के कार्य रास। सेवा करत होए निकामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। अपनी कृपा जिसाप करे, नानक सो सेव गुर की मतले। बीस विश्वे गुर का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने। सो सतगुरु जिस हृदय हर नाओ, अनेक बार गुर को बल जाओ। सर्व निदान जी का दाता, आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता। ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म, एक अब नहीं कछ परम। सह सियान फलया न जाइये, नानक ऐसा गुरु विड भागी पाइये। सफल दर्शन पेखत पुनीत, परसत चरण गत निर्मल रीत। पेट संग्राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दर गय गवे। सुनकर वचन करने आघानी, मन संतो गातम पतियानी। पूरा गुरु के जा का मंत्र, मृत दृष्ट पे कह हुए संत। गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस पाव है तिसले मिलाए। जे बाए कुस्तत अनेक, सतपुर पूर्ण भवे। काऊ बोल न पहुंचत प्राणी, अगम गोचर प्रभ निर्वाणी। निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत किन्ह न पाई। अनिक भगत बंधन नित कर है, चरण कमल हृदय सिमर है। सद बलिहारी सदगुरु अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने। यो अरस पावै जन कोए, अमृत पीवै अमर सोए। उस पुरख का नाहीं कदे विनाश, जाके मन प्रगटे गुणतास। आठ पैर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवक को दे। मोह माया कै संग न लेप, मन मेरा कै हर हर एक। अंधकार दीपक प्रगासे, नानक परमो दुख तैते न से। तब तुम्हारे ठाठ वरताई, अनंत भया दुख न ठेपाई। जन मरण के मिटे अंदेशे, साधु के पूर्ण उपदेशे। पौ चूका निर्भव होए बसे, सगल ब्याद मन ते कह न से। जिसका सातिन कृपा धारी, साध संग जपना मुरारी। थित पाई चुके भ्रम गवन, सुन नानक हर हज श्रवन। निर्गुणा सरगुण पियो ही, कला धार दिन सगली मोही। अपने जल प्रभा बनाए, अपनी कीमत आपे पाए। हर बिन दूजा नाही कोए, सर्व निरंतर एको सोए। ओत पोत रव्या रूप रंग, भय प्रकाश साध कै संग। रच रचना अपनी कल धारी, अनिक बार नानक बलिहारी। सलोक साथ न चले बिन भजन, बिख्या सगली चार। हर हर नाम कमावना, नानक के धन सार। अष्टपदी संत जना मिल करो विचार, एक सिमर नाम आधार। अवर उपास मीत विसारो, चरण कमल हृदय में उर तारो। करण कारण सो प्रभ समरथ, दृढ़ कर गहु नाम हरवत। तन संचो हो भगवंत, संत जना का निर्मल मंत। एकाश रखो मन माही, सर्व रोग नानक मिट जाहे। जिस तन को चार कुंठ उठ थावै, सो तन हर सेवा ते पावै। जिस सुख को नित बाचे मीत, सो सुख साधु संग प्रीत।
यशोबा को करे भली करनी, सासोबा पर हर की सरनी, अनिक उपावी रोग न जाए, रोग मिटे हर कद लाए। सर्व निदान मैं हर नाम निदान, जप नानक दरगह परवान, मन प्रभु दो हर कह नाय। दय दिष्टावता वैठाए, ताको बिघन न लागे कोई, जा कह हृदय बसे हर सोए। कल ताती ठांडा हर नाउ, सिमर सिमर सदा सुख पाओ, पाओ बिन सह पूर्ण होयास, भगत पाया तुम प्रगास, तित कर जाए बसै बिनासी, कौ नानक काटी जम फासी, तत् विचार कह जन साचा, जन मरे सो काचो काचा, आवागमन मिटै प्रभ सेव, आप त्याग शरण गुरुदेव, रतन जन्म का हुए उधार, हार हार सिमर प्राण आधार, अनिक पाव न छूटन हारे, सिमृत शास्त्र वेद विचारे, हर की भगत करो मन लाए, मन बंचत नानक फल पाए, संग न चालस तेरे तना, तू क्या लपटा वह मूर्ख मना, सुतमीत कुटंबर बनता, इनते कहो तुम कवन सुनाता, राज रंग माया विस्तार, इनते कहो कवन छुटकार, आस हस्ती रथ सवारी, झूठा डंप झूठ पासारी, जिन दिए तिस बुझे न बेगाना, नाम विसार नानक पछताना, गुर की मातू ले आने, भगत बिना बड़ू बेस्याने, हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चीत, चरण कमल राखो मन बाहे, जन्म जन्म के किल बिक जाहे, आप जपो अबरा नाम जपावो, सुनत कहत रहत गत पावो, सार भूत सत हर को नाओ, सह सुभाए नानु गुण गाओ, गुण गाव तेरी उत्तर समैर, बिन सजाए हो मैं बिख फैल, होवे अचिंत बसे सुख नाल, सास बिरा सर नाम संभाल, छाड़ सियान सगली मना, सास संपावे सच तना, हर पूंजी संज करो बिहार, यहाँ सुख दर गय जयकार, सर्व निरंतर एको देख, कहो नानक जा कै मस्तक लेख, एको जप एको साला, एक सिमर एको मन आहे, एक इसके गुण गाओ नंत, मंथन जाप एक भगवंत, एको एक कर पूर्ण पूरे प्रव्याप, अनेक विस्तार एक ते पै, एक राज प्राचित गए मंथन अंतर, एक प्रभराता गुरु प्रसाद, नानक एक जाता श्लोक, फिरत फिरत प्रभ आया परया तो शरणाए, नानक की प्रभेनती अपनी भक्ति लाए, अष्टपदी जाचक जन जाचे प्रवधान, कर कृपा देवो हर नाम, साजना की मांगो तूर, पार ब्रह्म श्रद्धा पू, सदा सदा प्रभु के गुण गाऊं, सास सास प्रभु तुम्हें त्याहूं, चरण कमल सिंह लागे प्रीत, भगत करूं प्रभु के नित नीत, कोटे को आधार, नानक मांगे नाम प्रसाद, प्रभु की दृष्टमा सुख होए, हर स्वभाव बिरला कोए, जिन चाके ऐसे जिन त्रिपताने, पूर्ण पुरख नहीं डोलाने, सुपार परे प्रेम रस रंगू, बुझै चाव साथ कै संग, परे शरणान सब त्याग, अंतर प्रगासन दिन दिवलाग, बुढ़भागी जपिया प्रभु सोए, नानक नाम रते सुख होए, सेवक की मनसा पूरी पई, सतगुर ते निर्मल मत लई, जन को प्रभु होयो दयाल, सेवक कीनु सदा निहाल, बंधन काड़ मुख जन पया, जन मरण दुख भ्रम गया, चुनी श्रद्धा सपूरी, रव रया सत्संग हजूरी, जिसका साथ लिया मिलाए, नानक भक्ति नाम समाए, सो क्यों बिसरै जे काल न भानै, सो क्यों बिसरै जे किया जाने, सो क्यों बिसरै जे सब किछ दिया, सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया, सो क्यों बिसरै जे अगन मै राखै, गुर प्रसाद को बिरला लाखै, सो क्यों बिसरै जे बिकते काढ़ै, जन्म जन्म का टूटा गाढ़ै, गुरु पूरै तत है बजाया, प्रभ अपना नानक जन त्याया, साजन संत करो एह का मान त्याग, जपो हर नाम, सिमर सिमर सिमर सुख पावो, आप जपो वरै नाम जपावो, भगत पाए तरिए संसार, बिन भगति तन हो सी चार, सर्व कल्याण सुख निधनाम, बूढ़त जात पाए विश्राम,
सगल दुख का हो चनासु नानक नाम जपो गुणता सुख जी प्रीत प्रेम रस चाओ मन तन अंतर ही सुहाओ नेत्रोपेख दर सुख होए मन भिक्षय सा चरण धोए पग जना कै मंथन रंग बिरला को पावे संग एक बस्त दी जय कर मया गुर प्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कही ना जाए नानक रहया सर्व समाय प्रभ बख्शंद दीन दयाल भगत वच्छल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल आद गुरु कारण करतार भगत जना के प्राण आधार जो जो जपै सो होए पुनीत भगत भाए लावे मनहीत हम निर्गुण यार नीच जान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान सर्व वैकुंठ मुक्त मोख पाए एक निम करके गुण गाए अनिक राज भोग वडियाई हर के नाम की कथा मन पाई वो भोजन कापर संगीत रसना जपती हर हर नीत भली सुगरनी सुभा तनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरमंत।

0: जब कारु कछ न दृष्टिता पापन तब कहते होता जब धारी अपन सुन संभा तब बैर विरोध किस संकमात जब इसका बरन चेन न जापत तब हरक शोक किस व्यापत आ जब अपना पापार ब्रह्म तब मोका किसोवत परम अपन खेला वरती जाना न करने हार न दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी
1: जब एक है हर अगम पार तब नरक सुगुस्तो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब शिव सकत कहो कित ठाए जब आपे आप अपनी ज्योत तरे तब कवन निडर कवन कट डरे आपन चलते आप करने हार नानक ठाकुर अगम पार अबनासी सुख आपन आसन तय जन्म मरण को कहा विनाशन जब पूरन करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो हो किस होए जब अब गत गोचर प्रभ एका तब चित्र गुपत किस पूछत लेखा

0: आज पुर अदार मूर्त जोन आज असेख
1: देशा न पेश जाकर रूप रेख नराग
0: जतर ततर दशा बिसा हो फैल्यो अनुराग
1: नाम काम विहीन पेखत ताम हो न जाहे
0: सर्व मांग सर्वत्र

0: मानव इंद्र गजेंद्र नराधव जांतर लोक को राज करेंगे।
1: कोट स्नान गजादक दान अनेक स्वयंवर साज भरेंगे।
0: महेश्वर बिशन सचिपत अंत

जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। वाहिगुरु सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत दे राखे आप वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दतार जियो। श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरु धाम जिन्हां तों सिख पंथ नूं विछोड़िया गया तिन्हां दे खुले दर्शन दीदार अते सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो जी।

मुसलमान की पीड़ा पे कुम्हार कर पांडे टांकियां जल्दी करे पुकार जल जल रोए बकड़ी चटड़ पवेंग्यार नानक जन करता है कारण किया सो जाण करतार पड़ बिन सतगुरु करना।

लखने किया चंगियाईया लख पुना पुरवान लख तपू पर तीर्थां सहजोग वेबान लख सूरतन संग्राम रण में छुट्टे प्राण लख सूरति लग्यान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करता करना किया लिख्यावन जान नानक मति मिथ्या कर्म सच्चा नी सान पौड़ी सच्चा सह

0: मूर्ख अंधा पत गवाए बिन नावे किछ थाए न पाए रह बेबाणी मणि मसाणी अंध न जाना सिर पछताणी
1: गुर भेटे सो सुख पाए हर का नाम मन मसाए नानक नदर करे सपाए आस अंधे से तेन केवल हो मैं शब्द जलाए पौड़ी पंक्ति मन पाऊं दे।

अजोधा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करे प्यार धर्मी धर्म करेगा वावे मंगे मुख द्वार जति सदावे जुक्त न जाने छड बह कर बार सबको पूरा पे होवे कट न कोई आखे।

ॐ सर्वदेवा देव देवता आत्मा आत्मा बास दिवस जी को जाने प्यो नानकता का दास है सोई निरंजन देव महला पहला कुंभे बद्धा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए ज्ञान का बद्धा मन रहे गुर बिन ज्ञान न होए पौड़ी पड़े हुए गुनागार।

नानक मेर शरीर का एक रथ इक रथवा हो जुग जुग फेर बटाइया ज्ञानी बुझहता है सतयुग रथ संतों का धर्म गैरथवा हो त्रित रथ जत का जोर गैरथवा हो द्वापर तप का सत गैरथवा हो कलयुग रथगन का कूड़ गैरथवा हो।

चोर चली चंद्रावल कान कृष्ण जादम भया पार जात गोपी लै आया बिंद्रा बन में रंग किया कल में बेदसर बनु हुआ ना खुदा यलो पया नील बस्तर ले कपड़े पहरे तुरप उठाने अमल किया चारे वेद हो इस चार पढ़ाए गुणे तन चार विचार भाव भगत करनी सदाए पवन मुकंतर पाई पौड़ी सतगुरु बिटवारिया।

0: पूर रहे भरपूर
1: टिका तेड़ धोती कखाई हथ सुर जगत कसाई नील बस्त्र पैर होए प्रवान मलेश धानले पूजे पुराण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे न जाना देखे चौका कड़ी कार उपरिया बैठे कूड़िया

अल्लाह पहला आपे भांडे साजियन आपे पूरन दे एक नी दुस्माई एक चुले रहन चढ़े एक निहाली पैसवन कुप्पर रहन खड़े तिना सवारे नानका जिनको नदर करे महला दूजा।

भी उदी अगी आवे उदी सरन चावे ते अरदास किवें करनी है। संग सहाई सो आवे न चीत, जो बैर आई तां सो प्रीत। बलुआ के ग्रह पीतर बसे, अन केल माया रंग रसे। दृढ़ कर माने मने प्रतीत, काल न आवे मूढ़े चीत। पैर विरोध काम क्रोध, झूठ बकार महालोक द्रोह। आ हालत मेरी ते कोई एक जन्म कोई एक दिन। आहू जगत बिहाने कई जन्म, किन्ने जन्म इं बीत गए। नानक राख लिहो आपन कर कर्म, तू अपनी कृपा करके मैनू रख ले। जो रख लवे तेरी परख है, तेन सुख दे देवे भी सुखां दी याद रखदा। जां सुखता सहर आवियो, दुख भी संभालियो ओए। आम तौर ते मनुख दे कोले सुख होवे बहुत, तराक विच ये गल कि लोग खीवे होके उस वाहिगुरु अकाल पुरख नूं भुल जांदे आ। जब तेन सुख आवे उसका शुक्र गुजार करी, जे कोई शरीर का दुख आ जाए तो उन्हें अलांभना नहीं। उदों भी आखी दात्या, यह भी तू दात बख्शी है, तेरा शुक्र है। शरीर नूं सुख भी आ सकता, शरीर नूं दुख भी जड़ा है वो आ सकता है। उन्हें याद करी, जे उदा शुक्र गुजार रहा जिहड़ा तेरा इस जिंदगी का मनोरथ सीगा कि मानस जन्म पा के होर किसे जन्म दे जूनी च उस वाहिगुरु दे नाल मिलाप नहीं हो सकता। हां ये गवाही भरदी अलाही बाणी कि होर जूनिया भी उस वाहिगुरु अकाल पुरख का नाम जपदियां, जो बोलत है मृग मीन पखेरू, बिन हर जाप है नहीं होना। जो वाहिगुरु अकाल पुरख का वो भी जाप करतियां ने, पर याद रखी उन्हां जूनिया च गुरु धारणा नहीं हो सकती। गुरु तो बिना उस वाहिगुरु अकाल पुरख का मिलाप जिहड़ा है वो नहीं हो सकता। गुरु की सरन विच केवल मनुख जामे जात है। जो गुरु की सरन जन गुरु नाम देंदा है तो फिर की कहता है, प्राणी जप जन्म गयो जा रहा जन्म तेरा, तू आया ते मैं तेनू ये आख्या है जपना कर। जे जपेगा ते फिर पार उतारा हो, जपेगा तेरा उस वाहिगुरु अकाल पुरख नाल मिलाप होएगा। पौड़ी धन गुरु अमरदास महाराज साहब जी जपन लग्या फिर इं आखी, हौ क्या सालाही किरम जंत। कीड़े होंदे आ, कीड़िया तो छोटे बिल्कुल किरम होंदे आ, वी किरम पै गए। मैं उहो जिहा किरमा, धन गुरु रामदास महाराज साहब जी ने भी पावन अल्फाज वरत्या, हम कीड़े किरम सतगुर सरनाई कर दया नाम प्रकाश। मैं इहो जिहा किरमा

मेरे तक पहुंच नहीं हो सकती। तू अगम दयाल अगम है, आपे लहे मलाई। गम पहुंच अगम जे तक पहुंच नहीं हो सकती, तेरे तक मेरी पहुंच नहीं हो सकती, मैं तेरे तक आ नहीं सकता। तू आवाज भी मारे मैं तह भी नहीं आ सकता। सुन अंधा कैसे मार्ग पावे, कर गए रेहो ओढ़ने बहावे। तू दयालु है, मेरी तेरे तई पहुंच नहीं, तू आप मेरी बांह फाड़, आप मैनू मिला ला। हुण मैनू यकीन हो गया है, तेरी आवाज सुन के भी तेरे तो बिना मेरा कोई बेली नहीं है। मैं तुझ बिन बेली को नहीं, तू अंत सिखाई। तेरे बिना कोई बेली नहीं, तेरे बिना मेरे अंत समय दे उत्ते कोई सिखायता नहीं कर सकता। असी बहुत आने ये समझा ही नहीं कि साडा बेली कौन हो सकता, असी वो रस्ता फड़िया ही नहीं। अनकाए रातड़िया वाट दुहेली राम, अभी सोचा ही नहीं भी साड़ा रस्ता बड़ा दुखा का भरिया, होर ही कमां रत्या। पाप कमाम दिया तेरा कोई ना बेली रहा, ये रस्ते तुरिया। वो कहते पाप करके सानू दे, पर किसी ने साथ नहीं देना, कहीं ने बेली नहीं बना। फिर की होगा जो कोई बेली ना बनया, कोई ना बेली होए तेरा सदा पछोताव है। एक पछतावा होएगा, और तो कुछ नहीं कर सकता। इस वास्ते हुण आ, हुण उहदी सरन विच डिग। दातिया मैं देखिया भी जो जो तेरी सरन विच आया ना, एक तेरा दे दारे जिथों मोड़िया नहीं गया। तू सरन आए नूं रख लिया, जो तेरी शरणागति तिन लह छड़ाई, तू उस नूं इह दुनिया दे बंधना तों छड़ा लिया। इह वी नहीं छड़ा के तू कई बारी कई बंदे छड़ा के लामा मारते आ, गुस्से हुंदे आ, नहीं तू बड़े प्यार नाल रख्या है। तेरे अंदर वो तामसी सुभा है ही तेरे घर, तेरे कोई तमाली बिरती है नहीं। नानक वे प्रवाहो है, मोर इलाही जोत स्वरूप, जामा तीजा फरमा रहा है कि वाहिगुरु ये भी नहीं कि तेनू साडी लोड़ होवे, तो वे प्रवाह है, तेनू किसी की परवाह नहीं है, पर तेरे अंदर तिल मात्र भी तामसी सुभा तमगुण नहीं हैगा, तमा नहीं हैगी। तिस तिल ना तमाई, तेनू एक होरा मासा भी तमा नहीं हैगी। ते तेरी शरण च आया, तू मेरे अंदरू तमा कट देगा। जदों तू तमा कट दिती, फिर मेरे भी ये लोक सुखी है, पर लोक सुहेले नानक हर प्रभ आपे। सतगुरु साहिब जी ने कृपा करके इलाही फरमान की संखेप चवार विचार कराई। विचारां करदिआं बहुत भुल्लां होईआं, सतगुरु साहिब जी गुरु की संगत अणजाण बच्चा जाण के माफ करियो, होईआं भुल्लां दी माफी करो, कृपा बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। रामकली महला तीजा, आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पिया मेरी माए,

0: तिस तिल न तमाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सलोक महला दूजा। किस ही कोई कोए मान्य ने माणी, एक तू क्यों ना मरीजै रोए, जा लग चेतना आवही। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सत्कार योग सत संगत जीओ, सतगुरां दी अपार बख्शिश रहमत हुई। अमृत वेला सतगुरां ने सानूं बख्शिश कीता है। तुसीं बड़े प्यार सत्कार भावना दे नाल अमृत वेले सतगुरां दी पावन गोद विच जुड़ बैठ के संपूर्ण आसा की वार दे शब्द कीर्तन सरवण कीते ने। उपरंत अज दे हुक्मनामे दीआं विचारां सतकार जो भाई सोहणा कोल सरवण कीतीआं अरदास विच शामिल होए हो। पावन पवित्र हुक्मनामा सरवण कीता है। सतगुर कृपा करन साडा सारिआं दा गाव्या सुणिआ महाराज दर ते प्रवान करन। इसे तरह गुरु चरणा नाल जुड़े रहिए। बेनती है गुरु घर दीआं दो बिल्डिंगां नॉर्थ हाल साउथ हाल बन रहीआं ने। आप संगतां वध चढ़ के सेवा कर रहे हो। होर भी आप संगतां दे चरणां च बेनती जिन्ना भी हो सके दसवंधी कार पेटा कट के गुरु घर दे विच सेवा करके गुरु दीआं खुशियां प्राप्त करिए जीओ। दूसरी बेनती है अज तन तन साहब श्री गुरु अमरदास महाराज जी दा ज्योति जोत दिहाड़ा है। गुरुद्वारा दीआं सिख संगतां वल्लों बड़े प्यार श्रद्धा भावना दे नाल मनाया जा रहा। सतगुरु कृपा करन धन गुरु अमरदास महाराज जी सारिया सिख संगतां नूं नामदान गुरसिखी जीवन की दात बख्शिश करन जीओ। 27 सितंबर नूं भाव कल नूं तन तन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पहले प्रकाश पुरब की खुशियां के संबंध में अमृत वेले भोग पाए जाएंगे सहज पाठा के। उस तो बाद 1 बजे तो लैके 3 बजे तक गुरु घर की बाउंडरी के अंदर ही नगर कीर्तन कढ़िया जाएगा। आप संगतां दे चरणां दी बेनती वध तो वध पहुंच के गुरु दीआं खुशियां प्राप्त करिए जीओ। कल नूं इसे संबंध में साडे कोल सिंह साहब ज्ञानी जसविंदर सिंह जी वह भी पहुंच रहे हैं। भाई सिमरनजीत सिंह जी खालसा हजूरी रागी श्री दरबार साहब अमृतसर साहब वाले वह भी पहुंच रहे हैं। आप संगतां नूं कथा ते कीर्तन द्वारा निहाल करनगे जीओ। यह बेनतियां प्रवान करनियां। होर जानकारी वास्ते तुसीं गुरु घर के सकत्तर साहब सत्कारयोग सरदार रजिंदर सिंह जी मंगर साहब उन्हां नाल संपर्क कर सकते हो। उन्हां दा फोन नंबर है 4087124145 ते होर जानकारी ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु के लंगर तैयार ने छके जाने की कृपाता करनी। आओ जो सरबत के भले वास्ते सहज पाठ चल रहे ने सत्कारयोग भाई साहब भाई नवनीत सिंह जी पहुंच चुके ने। उन्हां दी रचना तो 10 बजे तक सहज पाठ श्रवण करांगे। उस तो बाद अजे ज्योति जोत दिहाड़े नूं मुख रखदिआं होइआं स्पैशल कीर्तन होगा 10 बजे तो लेकर 11 बजे तक। कीर्तन करनगे सत्कारयोग भाई साहब भाई लखन सिंह जी का जथा जिन्हां कोल समय जरूर श्रवण करन दी कृपालता करनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
0: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप साध संगत जी वडभागी हो जो गुरु चरणा का लाह प्राप्त कर रहे हो। पावन पवित्र श्री सहज पाठ जी का समा होया है। अज पावन अंग 1242 तो श्री सहज पाठ अगे प्रारंभ आप करने हैं जो सारंग की वार दे पाठ चल रहे हैं। 1242 अंग तो अज दे श्री सहज पाठ प्रारंभ हो रहे हैं जी।

बिन गुण गर्भ करंत पौड़ी, गुरमुख सब पवित्र है, तन संपै माया, हर अर्थ जो खर्च दे, दिन

गढ़ मंदिर गच गिरिया किछ साथ न जाई सोएन साखत पौन वे त्रिग त्रिग चतुराई छत्ती अमृत परकार करह बहुमैल वधाई नानक जो देवै तिसै न जाननी मन मुख दुख पाई। श्लोक महला तीजा। पाड़ पाड़ पंडित मोनी थके देसंतर भव थके भिख धारी दूजै पाए नाव कदे न पायन दुख लागा अत भारी मूर्ख अंधे त्रैगुण सेवै माया के कै व्यवहारी अंदर कपट उधर भरन कै।

नानक गुरु प्रसादी सो बुझसी, जिसे आप बुझावै पौड़ी, सब को लेखे विच है।

मनमुख तिनके बखीली के करे जे सच्चा शब्द सुवारे उन्हां दी आप पत रखसी मेरा प्यारा शरणागत पए गुरुद्वारे नानक गुरमुख से सुहेले पए मुख उजल दरबारे पौड़ी स्त्री पुरख है बहुप्रीत मिल मोह वधाया पुत्र कलत्र नित विख है।

0: विण नावै त्रिग मोह जित लग दुख पाया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग गुरु रूप सासंग जी, आप जीवन भागी हो जो गुरु कृपा सदका नितां प्रति गुरु चरणा विच बैठ के, घरां विच बैठ के इलाही बाणी दे श्री सहज पाठ नाल जुड़दे हो। सतगुरु जी कृपा करन, सबना दी हाजरी दर प्रवान करन, दरों करों चढ़ दियां कला बख्श करके नवाजन जी। अज साहिब सतगुरु तीसरे गुरदेव धन धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी का ज्योति ज्योत पुरब है, सो उसे संबंध अंदर विशेष कीर्तन हाजरी भाई साहब भाई लाखन सिंह जी और उन्होंने जथाप जी गुरबाणी कीर्तन नाल जोड़ेगा जी। प्यार सर सरवण करिए, भुला चुकां दी खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: वाहिगुरु।

निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैगम गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी।

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत गड़बड़ हत्या कमाए अशांत पापी पाप अशांत कूड़े आए अशांत मलेच मल पाप खाए अशांत निंदक करे पाप नानक नीच कह क्या मारे न जाना दे जो तुझ पावे सही परिकार सदा सुना संत नाम संत नाम राम राम संत दो संत कहें से पार होए।

निस्तार निर्भय निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैलम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होशी।

अंत मूर्ख अंत घोर संत चोर राम असंत अमर कर जाए असंत कल वाय संत पापी पाप असंत कूड़े आए संत मलेश मल पाए असंत निंद

अशंत मूर्ख अंत घोर अशंत चोर राम अशंत अमर कर जाए अशंत गलवट हत्या कमाए अशंत पापी पाप अशंत कूड़े आए अशंत मलेच मल पाए अशंत निंदक करें पा नानक नीच कह क्या मारे न जा जो तुम पावे सही सही पाप सदा सुन।

भौ निर्वै अकाल मूरत अजुनी सैदम गुर प्रसाद। जब आद सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत गड़बड़ हत्या कमाए अशांत पापी पाप अशांत कूड़े यार करे फिराए अशांत मलेच माल पाए अशांत निंदक करे पा नानक नीच कहे क्या मारे न जाना के जो कुछ पावे सही फलिका दूसरा सलाम संत नाम संत नाम राम राम संत दो असंत कहें सिर्फ।

निर्भौ निर्वैर अकाल मूर्त अजुनी सैगम गुर प्रसाद। जब आदि सत्य जुगाद सत्य है भी सत्य नानक उसी

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर करता है अशांत काल वाया कमाए अशांत पापी पाप अशांत कूड़े यार करे फिर अशांत मलेच मार पाता है अशांत निंद

निर्भौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैगम गुर प्रसाद। जब आदि सच जुगाद सच है भी सच नान

अशंख मूर्ख अंध घोर अशंख चोर राम अशंख अमर कर जाए अशंख काल वाय शंख पापी पाप अशंख मूरे आए अशंख मले मल पाए अशंख निंदक करें पा नानक नींद कह बार न जावा दे जो कुछ पावे सही सलीका संख नाम संख नाम राम राम संख दो असंख कहें सिर्फ।

सोहन पंच प्रवान नगरी कर्म प्रवे कच्छ खाई उत पाए नानक गया कर्म खंड का ज्ञान खंड का इतने पौन पानी वह संतर के

सत्ताधर निर्भव निर्वय अकाल मूर्त अजुनी सैगम गुर प्रसाद। जब आद सच जुगाद सच है भी सच नानक

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत गलवे संत पापी पाप अशांत मूड़े आर करे फिराए संत मलेच मल पाए अशांत निंदक करे पाप नानक नीच कहे विचार मारे न जामा के जो सुख पावे सही परिकार सदा सदा मत संत नाम संत नाम राम राम संत दो संत कहें सिर्फ।

है संसार सदगुरु कर देखे सोए नानक हुकुम दी रती रुती थी आ पौन पानी आगे पाता इस विच धरती थी।

निर्भौ निर्वैर अकाल मूर्त अजुनी सैगम गुर प्रसाद। जप आदि सत्य जुगा।

असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर राम असंख अमर कर जाए असंख काल वत्या कमाए संख पापी पाप असंख मूर आए बुढ़ाए संख मलेच मल पक पाए असंख निंदक करे नानक नीच कह बारे न जावा के जो तुम पावे सही फलिका नाम संत नाम संत नाम राम राम संत लो असंत कहें।

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत कालवट हत्या कमाए अशांत पापी पाप अशांत कूड़े आर करे फिराए अशांत मरे माल पाए अशांत निंदक करे पास नानक नीच कहे मारे न जावा जो कुछ पावे सही कर।

आकाश विश्वित तरसी थावती सर्व साधी करमी सोहन पंच प्रवान नदरी कर्म सवै कच्छ खाई उथ पाए नानक गया कर्म खंड का।

कृता पुरुष निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अजुनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सत्य जुगाद सत्य है भी सत्य नानक होशी।

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत कालवट हत्या कमाए अशांत पापी पाप अशांत कूड़े आर जाए अशांत मलेच मार पाक खाए अशांत निंदक करे नानक नीच कहे क्या मारे न जावा के जो तुम पावे सही परिपा सदा सदा मत संत नाम संत नाम राम राम संत लो संत हैं सिर्फ।